फेसबुक पर एक सवाल भी चल रहा है और ये भी जाकर आप चेक कर सकते हैं और अपने कमेंट्स जो है ये भी आप दे सकते हैं। कहते हैं वंस अ चीटा ऑलवेज अ चीटा, डू यू अग्री और डिसएग्री, इसके बारे में आप बता सकते हैं, अपना टू सेंट दे सकते हैं। उधर ऑनलाइन लिसनर जितने भी हैं उनको भी हम शामिल कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ देते रहें, मैसेज हमारे पास आप भी भेजते रहें और जाकर कमेंट वगैरह करते रहें फेसबुक पर, या मौका लगे तो हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं। एंड वी वांट टू नो कि अराउंड द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड कहां पर आज सुबह सुबह प्रोग्राम आप सुन रहे हैं द डीजे शालिन शो, और ऐप पर और भी क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रही होगी सुबह सुबह।

0: you're suddenly not in as much of a rush to get home. Suddenly, texting her back can wait. You suddenly remember to put your seatbelt on. And you suddenly remember what your indicator's for. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
1: यार मुझे फिजी जाना था।
2: कब जाना है?
1: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
2: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
1: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
2: I think you should contact Coastal Rental Cars. इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
3: Coastal Rental Cars. Visit coastalrentalcars.com.fj or for bookings call on 00679-652-0228.
2: Explore Fiji the coastal way.
4: Health Discount Furniture. Papa Toy mein chal raha hai amazing specials from beds, dining suites and lounge suites. खरीदिए ब्यूटीफुल 7-पीस डाइनिंग सुइट या क्वालिटी कॉर्नर लाउंज सुइट और लग्जूरियस ग्रीन पिलो टॉप पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस एट रीजनेबल प्राइस. क्वालिटी फर्नीचर लो प्राइस में. एल्स डिस्काउंट फर्नीचर, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल. 355 ग्रेट साउथ रोड, पापा टॉय.
5: पापा टॉय फ्लैट बुश और पापाकुरा के बाद अब DH सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन. दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड, हेंडरसन. ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग. यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में. DH सुपरमार्केट नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड.
6: Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end Sunday. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
7: जी, AJ के घर दिया और हमें
8: तुम्हारे पास तो है घर.
7: वो तो हम खरीदा है, तुम नहीं देगा हमें कुछ.
8: ये तुम लोग को जो मंगता हम तो है, हमें दे देगा कि नहीं यार.
7: रान दो, नहीं मंगता.
8: तुम चाहे मुंह फुलाओ चाहे चिल्लाओ, एक सेंट नहीं देगा.
7: हाँ, सब लेके जाना.
8: हाँ, हम ले जाएगा. लड़कन तो हमने कंगाल कर दी यार, चल दो यहाँ से.
7: ताजी के नहीं तंग करो, अपन घर अपने बनवा लो. इंडेलिबल होम्स के रिंग करो 0800-233-111 पे.
9: At Woolworths, our potatoes are big on flavor, making them the perfect side dish. Like pre-packed Perla's potatoes 1.5 kg, a fresh deal at just $5 a pack. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
5: वीकेंड में घर का सामान लेना है तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आए DH सुपरमार्केट हेंडरसन, 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड इन हेंडरसन, जहां पर आपको मिलेंगे ग्रेट इन स्टोर स्पेशल्स, ह्यूज स्टोर एंड एम्पल पार्किंग एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन, DH सुपरमार्केट.
10: नमस्ते ऑकलैंड, मुश्किल वक्त में सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज आपके साथ है.
11: ये ऑफर करते हैं कंप्लीट फ्यूनरल पैकेज सिर्फ $4,299 से.
10: इस पैकेज में शामिल है ट्रांसफर्स, एम्बामिंग और सर्टिफिकेट, ग्रोवनर कास्केट, लाइव स्ट्रीमिंग, एक घंटे का चैपल सर्विस, क्रिमेशन या बुरियल, डॉक्टर सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई एंड प्रोड्यूस करना. ओवरसीज रिपेट्रिएशन अवेलेबल है.
11: ये विन्स अप्रूव्ड है, ऑकलैंड रीजन के लिए वैलिड.
10: ऑकलैंड के बाहर के लिए कॉम्पिटिटिव रेट्स के लिए कॉन्टेक्ट करें शलिन सिंह को 0272929776. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
12: सिद्धि गुरुवर सिद्धेश्वर ब्रह्मऋषि गुरुदेव की पावन उपस्थिति में न्यूजीलैंड में इन शहरों में जरूर पधारे. ऑकलैंड में उनका प्रवचन मंडे 27 अप्रैल, स्वामी नारायण कॉम्प्लेक्स पापा टोय टोय क्राइस्टचर्च में, सैटरडे 2 मई रोलेस्टन कम्युनिटी सेंटर और वेलिंगटन में संडे 3 मई को इंडियन कल्चरल सोसाइटी हॉल पिठोनी में. प्रोग्राम्स 3 PM से शुरू होंगे. एंट्री फ्री है और महाप्रसाद भी होगा. और जानकारी के लिए उषा कुमार जी को कॉल करें 0210730829 पर.
13: Global fuel prices are impacting Kiwis, so these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tire pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
14: भाई साहब आइए, कैसे हैं?
15: नमस्ते नमस्ते। मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
14: एनजेड मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
15: प्यारा मंडप तो है, पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी
14: जी। नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एनजेड मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
16: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट एनजेड मंडप फेसबुक पेज।
17: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्केस पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट। इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

ओके डीजे शालिन शो ये जारी है। इन बंदों को कुछ मालूम नहीं था शो के बारे में, ऐसे ही बना दिया ये जिंगल। बट एनीवे अच्छा वाइब अच्छा लगता होगा आपको भी, शायद मूड में कर दिया होगा। चलो हमारे साथ साथ आप भी चलते रहें। एक सवाल फेसबुक पर ये भी है कि व्हाट किल्स लव द फास्टेस्ट, प्यार किस तरीके से ज्यादा कम हो जाता है, क्या जेलसी के कारण या फिर झूठ के कारण या फिर जब डिस्टेंस हो जाता है। आपको अगर ओडा में करना हो कि किस चीज से प्यार लोगों में कम हो जाता है तो सबसे ऊपर क्या होगा, जलन भाव या फिर झूठ या फिर डिस्टेंस जब होने लगता है तो इस पर आप कमेंट करें। एंड सम पीपल हैव एक्चुअली कमेंटेड, तो ये हम जरा सा चेकआउट करेंगे कि क्या लोगों ने लिखा है, और आप भी कॉल करके भी बता सकते हैं। नोमा इन्होंने कहा झूठ और जब डिस्टेंस हो जाता है यानी कि दूरियां हो जाती है तो इससे प्यार जो है ये कम हो जाता है। तो आप भी जाकर अपना जो कमेंट है ये करते रहें और हमारे पास मैसेज आप भी भेजते रहें। और एक और इमेज इसमें पोस्ट किया गया है ऑन डीजे शालिन फेसबुक पेज, यू नो लेजेंड्स कैन रिलेट। इस फोटो में एक बेल्ट है और साथ में एक जूता है, चप्पल है और एक झाड़ू है। अब इसको अगर बताया जाए किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो आपका जवाब क्या होगा, और नो बचपन में किन किन लोगों ने यह सब महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, यू नो वो बेल्ट, वो जूता और वो झाड़ू या फिर मोप वगैरह, किससे आपने यू नो कभी मार खाई होगी, ये आप बताना चाहेंगे आज खुलकर नेशनल रेडियो पर। यू नो वो घर पर जब माँ गुस्सा होती थी या पिताजी के हाथ में जो आता था उससे उठाकर वो नो आपको मारते थे या फिर कुछ किया था आपने, तो सबसे कॉमन वाला क्या था, आप कुछ रिलेट कर सकते हैं तो हमारे पास आप कॉल करके बता सकते हैं। निकोलस सिंह आज अपना बेहतरीन मना रहे हैं, वाइफ है जेनेट, डॉटर है इजाबेला, साथ में 5 ब्रदर्स है, एक सिस्टर है, मम्मी है सूजी, इन्होंने भी आज इनको याद किया है। हमारी ओर से भी निकोलस भाई ये दिन आपको आने के बाद शुभ हो, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। 26 मिनट रह गए हैं सुबह 9 बजने में, डीजे शालिन शो ये जारी है।

22 मिनट रह गए हैं सुबह 9 बजने में. डीजे शालेन शो ये जारी है और कमेंट आप भी करते रहें. और एक और सवाल जो हमने किया है कि कौन सी चीज है जिससे प्यार में कमियां आ जाती हैं, नो प्यार कम होने लगता है, क्या वो जेलसी है, क्या वो झूठ है, क्या वो डिस्टेंस है, तो आप अपने कमेंट करते रहें और विल सी एंड ऑफ द शो कितने लोग कमेंट करते हैं और सबसे कॉमन वाला जो जवाब वो क्या होता है. मीनवाइल आप भी कहीं पर हैं, प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं, मैसेज भेजते रहें. डीजे शालेन फेसबुक पेज या फिर कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं.

0: अपना हो गर्म या ठंडा, रिलायंस वेंटिलेशन का हाजिर हो जाएगा बंदा। कॉल अस नाउ फॉर अ फ्री कोट ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन मेक्स
1: हैप्पी हेल्दी होम्स। श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल प्रोजेक्ट।
2: ये होगा संडे 17 मई को 11 AM to 4 PM
1: 378 RRE Moo Road रामानामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
2: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
1: वन टेम्पल वन कम्युनिटी इटर्नल ब्लेसिंग्स।
3: आई एम सोफी एंड माय पार्टनर रिसेंटली इंजर्ड हिज शोल्डर प्लेइंग बास्केटबॉल, बट ही सॉ अ फिजियो एंड शी गेव हिम अ क्लियर प्लान। She showed him exercises that were right for him and how to use things around the house instead of weights. And it worked. He recovered in time for the birth of our twins and he was able to hold them in each arm. It was pretty special.
4: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active during your recovery can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
5: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
6: क्या काम की भागदौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए, स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के आपकी मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट्स, ब्लेजर, शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर के प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं, और इडुवे ब्लैंकेट और स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोडार्ड रोड माउंट रॉस्किल। आसान, भरोसेमंद और 20

डीजे शालन शो दिन में 12 बजे तक चलता रहेगा। इधर एक ग्रेनी फ्लैट है रेंट के लिए, अगर ब्लॉक हाउस बे एरिया में आप ढूंढ रहे हैं तो एक्सलेंट और क्वाइट लोकेशन है। न्यू हीट पंप इंस्टॉल किया गया है, वाईफाई सर्विस भी अवेलेबल, 450 पे वीक इसका रेंट है। 0217080 इज द नंबर, इस नंबर पर इनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैसे हीट पंप अगर आपको चाहिए, विंटर के लिए तैयारी आप कर रहे हैं, तो रिलायंस वेंटिलेशन को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 0800-787-111 इज द नंबर, इस नंबर पर इनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इनसे आप बातें कर सकते हैं हीट पंप के लिए। ओके, इधर डीएच सुपरमार्केट 5 मोजेल एव ऑफ लिंकन रोड में खुल चुका है। अगर वेस्ट ऑकलैंड में आप रहते हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि यहाँ पर नो डेली स्पेशल्स इनका रहता है। फूड ग्रोसरीज जो भी आपको चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह यहीं पर आपको मिल सकता है। तो 5 मोजेल एव ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन, यहाँ आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास, इसके बारे में भी जानकारी आज। वैसे इधर ACG स्टेटलैंड कॉलेज और ACG संडरलैंड कॉलेज का ओपन डे भी है, जिसके बारे में कई दिनों से जानकारी आपको हम देते आ रहे हैं, तो यहां पर भी शायद आज लोग जाने वाले हैं ये सभी कुछ चेकआउट करने के लिए, इनके फैसिलिटीज वगैरह देखने के लिए और इनका जो प्रोग्राम है कैम्ब्रिज वाला ये सब चेक करने के लिए। मूविंग ऑन, स्पोर्ट्स हेडलाइंस क्या कुछ बना। कल क्रुसेडर्स की हार हुई और आज ब्लूज और मोना पेसिफिका वाला मैच है और फिजियन रुआ का खेल भी रहेगा आज शाम 4 बजे उधर फिजी में। इसके बारे में भी कुछ जानकारी आपसे हम शेयर करेंगे इस प्रोग्राम में। शेली एंड जेन प्रोग्राम सुन रहे हैं दोनों मिलकर, हस्बैंड एंड वाइफ इधर वेस्ट ऑकलैंड में। और शेली आपने गाना याद दिलाया एंड लकी, ये गाना हमारे पास है नो सिस्टम में, तो चलो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। एक और हाई स्कूल हिट, एक और ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट आपके लिए।

0: इधर एक फैमिली है, दे लुकिंग फॉर टू या थ्री बेडरूम वाला मकान साउथ ऑकलैंड में. अगर आपके पास है तो नो इनसे आप बातें कर सकते हैं. 021-029-87336 021-029-87336 इज द नंबर. इस नंबर पर इनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. DH सुपरमार्केट के जो स्पेशल्स हैं ये भी हमको मिला है. और सबसे पहले मेरी नजर पड़ी कंट्री स्टाइल कॉर्न मटन पर. ओके, कंट्री CONTRY कंट्री स्टाइल कॉर्न मटन 7.99 ईच. और ओल्ड कैपिटल टूना फ्लेक्स 3.48.99. और मैंगो अगर खाने का दिल कर रहा है, DH सुपरमार्केट इधर मोजेल एव हेंडरसन में आ गया है $1.49 ईच. रॉयल पंजाब बासमती राइस 5 kg 9.99 ईच. सनफ्लावर ऑयल 5 लीटर 16.99. होल मिल्क पाउडर ये 1 kg 9.99 ईच इसका दाम है. कनोला ऑयल 20 लीटर 64.99. मे बी टाइम हैज कम कि ऑयल ऑयल कम कर दें आप. देखो दाम भी कितना ऊपर चला गया. पील्ड गार्लिक 1.99 ईच इसका प्राइस है. और ओकरा भिंडी चाहिए 9.99. ये जाकर फ्रेश भिंडी जो है यहाँ से आप ले सकते हैं. और टमाटो 1.99 kg. और ये स्पेशल्स रहेगा आज और कल के लिए. याद रहे कि DH सुपरमार्केट लिंकन रोड 5 ऑफ लिंकन रोड 5 मोजेल एव यहाँ पर है. इनके जो स्पेशल्स हैं इससे आप फायदा उठा सकते हैं. NZ हेरल्ड में आज एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है एंड काफी सेड ये है. दरअसल फ्यूल कॉस्ट के कारण अब काफी लोग 700% ज्यादा लोग जो है दे आर नाउ मिसिंग GP अपॉइंटमेंट्स. क्योंकि लोग पैसा जितना भी सेव ऑफ कर रहे थे इट्स ऑल गोइंग टूवर्ड्स पेट्रोल. तो पेट्रोल के कारण अब ये GP अपॉइंटमेंट्स जो है ये भी स्किप कर रहे हैं. ओके, तो या इसके बारे में तो और भी बातें हम कर सकते हैं लेकिन ये आज सुर्खियों में भी है. रेडियो तराना पर DJ शालिन शो जारी है. सुबह के 9 बजने वाले हैं.
1: डैडी कैसे? राम राम.
2: ठीक बेटा, राम राम. घर बने? कहाँ तक पहुँचा?
1: पेंटिंग हुए डैडी.
2: कितना अच्छा बिल्डर मिल गए रे. क्या नाम है उन लोगों के?
1: इनडेलेबल होम्स.
2: हमारे पास भी 10-15 घर रहता अगर हमारे टाइम पे ऐसा बिल्डर मिल जाता.
1: अभी भी सकता बनाए डैडी, बना के हमें दे दो. हाँ,
2: वाह.
3: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स. फोन 0800-233-111.
4: हार्वी नॉर्मन सुपर वीकेंड. स्पेंड $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end Sunday. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
5: Right now at Woolworths, you can collect 10 times points on some of your favorite brands. Simply hit Boost in the Rewards app, shop products from participating brands and scan your Everyday Rewards card at the checkout. Ends 10th of May. Visit everydayrewards.co.nz for full T's and C's.
6: Anchor Protein Plus pouches and shakes are packed with protein, yumness and make nourishment so deliciously simple. To get your protein in, all you need to do is crack open, enjoy, done. Anchor Protein Plus, protein made deliciously simple.
7: You are tuned into Radio Tarana.

0: Rana.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
2: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से। और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड 3 किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 आररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है।
3: लॉस ऑफ अ लव्ड वन इज एन अनफिल्ड वैक्यूम डिमाइस न्यूज।
4: दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के रजनील राज चौहान उर्फ राजू और रीमा की बहन पापाकुरा के मास्टर विजय शंकर की पत्नी सीमा शंकर की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम बोर्ड और प्लेसवीरी में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप 0226096404 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के रजनील राज चौहान उर्फ राजू और रीमा की बहन यानी पापाकुरा के मास्टर विजय शंकर की पत्नी सीमा शंकर की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम बोल्ड आउट प्लेसवीरी में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप 0226096404 पर संपर्क कर सकते हैं।
5: शोक सूचनाएं ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम की तरफ से।

0: शैलन। जिंदगी बहुत कीमती है तो फ्यूनरल भी अलग ही होना चाहिए, ठीक वैसे जैसे जिंदगी उन्होंने जी थी। ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम ने पिछले कई सालों से हमारी कम्युनिटी को बेस्ट फ्यूनरल सर्विस दी है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी किसी भी रिलीजन की जरूरत को समझकर बिल्कुल सही तैयारी की जाती है। यहाँ इजी पे फ्यूनरल प्लान भी अवेलेबल है। इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स पर एडवांस पेमेंट के बारे में पता करने के लिए कॉल करें 2788600।
1: फ्यूल का दाम रोज बढ़ रहा है और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है इफिशियंट ड्राइविंग का और वेस्ट सिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, इफिशियंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो एमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट westcityautogroup.nz और सर्च ऑन सोशल्स फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप।
2: ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अर्बन कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड,
3: वी प्रेजेंट पिको टॉय टॉय, अ ब्रांड न्यू अर्बन डेवलपमेंट इन पापा टॉय टॉय, ब्रिक, लो मेंटेनेंस, 2 and 3 बेडरूम होम्स फ्रॉम 649,000,
2: 5 मिनट्स फ्रॉम न्यू वर्ल्ड, ईट्रीज, स्कूल्स, सिटी रेल लिंक, पुहिनोई बस इंटरचेंज एंड मेजर मोटरवेज।
3: Join the new community. Selling now. Find out more at pikotoetoe.nz.
2: That's pikotoetoe.nz.
4: Introducing Pizza Hut's new tikka and paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.

ये एनालिसिस क्या है जी, इसके बारे में तो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी ये जारी है डीजे शालिन शो और मजा आ रहा है। लोग नो को कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कहां पर हमको फॉलो कर रहे हैं आज सुबह सुबह, तो आप भी कहीं पर हैं, प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं, आपको भी हम शामिल कर रहे हैं। और इधर निर्मला कुमार, आपने भी मैसेज भेजा है, कमेंट किया है, एक्सप्लेन लव इन वन वर्ड, अगर एक वर्ड में लव को डिस्क्राइब किया जाए तो क्या होगा। किसने लिखा कनेक्शन, किसने लिखा है उधर बॉबी डीजे देसी एकदम जमकर प्रोग्राम सुन रहे हैं वेलिंगटन में, इन्होंने लिखा है सेक्रीफाइस। ओके ब्रदर, बिग वर्ड है सैटरडे मॉर्निंग के लिए। दिवेन महाराज, आपने लिखा ट्रस्ट। ओके दिवेन भाई, आपको भी हम शामिल कर रहे हैं, एंड ऑल द बेस्ट टू योर ब्लू टीम। रोनिता राधिका रेड्डी, आपने कहा चूजिंग। ओके चूजिंग व्हाट। मुकेश रेड्डी, आपने लिखा लस्ट। प्रेम रेड्डी, आपने लिखा अफेक्शन। और उधर वेलिंगटन वेदर अपडेट दिया है देसी ने, मोरेना ब्रदा, क्लाउडी मॉर्निंग इन वेलीवुड, नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू ब्रदा, एंजॉय करते रहें। और जितने भी और हमारे दोस्त हैं उधर, दलाल फैमिली है वेलिंगटन में, इनको भी हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम, ये भी एंजॉय कर रहे हैं। ये गाना नंबर वन था ना उस साल का, कब का था ये, बिफोर लास्ट ईयर, लेकिन अभी भी उतना ही लोकप्रिय है। आज आपके लिए हम पेश कर रहे हैं सुबह सुबह

0: DJ Shalin Show, ये जारी है। आज के डेट में भी लोग प्राइवेट कॉलर बनकर रिंग करते हैं। आई थॉट ये जमाना चला गया है। ठाकुर मैं देख रहा हूँ कोई प्राइवेट कॉलर ऐसे लिखा है। ये सब हाइड्रेट करके लोग क्यों कॉल करते होंगे जी?
1: जब कॉल आवे कोई लेडीज की तरफ से तो पता ही लगे कहाँ से। कुछ छुपाना होता नाउ आई डोंट नो। हाँ,
0: तो
1: तुम उसको कॉल भी नहीं कर सकते हो।
0: हाँ वही तो, आजकल तो नो जमाना कहाँ से कहाँ, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चला गया, लैंडलाइन भी निकल गया। तुम्हारे घर पर लैंडलाइन अभी भी है?
1: नहीं नहीं, मैंने भी बंद कर दिया, वो जरूरी नहीं पड़ता। उसको सीनियर से, अब तो हर सीनियर के पास भी देखो वो एप्स लेकर घूम रहे हैं।
0: अच्छा,
1: और सीनियर से बात कर रहे हैं तो मेरे पास भी काफी मुद्दा है सीनियर्स के लिए
0: जी।
1: बता दे आपको, वेलकम टू मई, सेकंड मई है। और मैं क्यों खुश है हमारे लिए, क्योंकि $31 पे वीक हमारा सब्सिडी जारी हो गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमें हम बूढ़ों के लिए मिलता है। दैट कम्स टू अबाउट $62 अ फोर्टनाइट। तो अगर आप कपल हो तो एक का उतना में आएगा, और महीना का लगभग $100 होता है। तो अगर आपके बच्चे कहे, अगर बच्चे जो सुन रहे हैं, वो अपने माता पिता को आप ठंडे में कुड़कुड़ाने मत देना, क्योंकि उनको सब्सिडी मिल रहा है, वो आपको हेल्प करते सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में। तो आप जब भी हो सके प्लीज कीप वो, क्योंकि अगर इस उम्र में आप वार्म नहीं रहोगे तो आपके हार्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो प्लीज कीप वार्म। और एक और बात मैं सीनियर से कहता हूँ, अभी हम अपने कुछ लोग मिले थे, कह रहे थे कि हम फीजी से आए हैं, इतनी गरीबी से, हमारा आदत होता है कहीं रास्ते पर चलता कोई एक बुलेट मिल जाए तो उसके रख ले, बुलेट कटर यूज करेंगे, नीला मिल जाए रख ले, कोई बुक कहीं जाते हैं हम कहीं भी बटोर लेते हैं। वी एंड अप विद सो मच जंक इन आवर होम। प्लीज अब हम उम्र हो गए, ट्राई टू गेट रीड ऑफ देम। किसी चीज को अगर तुम एक साल नहीं यूज करा है, दैट मीन्स यू विल नॉट नीड इट। और तुम अगर तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे बच्चे उसको लोड करके ले जाकर वो डंप कर देंगे। तो प्लीज उसको किसी को दे दो, रास्ते पर रख दो, या हॉस्पाइस या सल्वेशन आर्मी को दे दो, आप ये कर सकते हैं। और अभी एक और बात अभी मुद्दा में आया है, एल्डा अब्यूज। देखिए, मेरा मोटो है, मेरा जो कहना है, जुर्म करना पाप है, जुर्म सहना उससे भारी पाप है, और जुर्म होते देखकर चुप रहना सबसे भारी पाप है। इसीलिए ठाकुर कभी जुर्म होते नहीं देखता है। तो कभी आप कोई

0: अभी आप 10:30 बजे के बाद में लगभग आसपास में हमारे जो फिजी गिरमिट फाउंडेशन के प्रधान है और जो फ्लेट बुश का बोर्ड मेंबर है, लगभग फिजी इंडियन में लगभग एक ही हमारे बोर्ड मेंबर है लोकल बोर्ड का, क्रिश नायडू, मेरे ख्याल से वो आ रहे हैं और आपको गिरमिट के बारे में और जानकारी देंगे लगभग 10:30 के आसपास में। और 16 को हमारी मलेलोवा में है। और लोगों को हम बता दें, जो OVITs है, प्लीज आप रजिस्टर हो जाए, अगर नहीं हुए हैं तो आप ऑनलाइन जाकर संपर्क करें, या हो सके तो मुझे कॉल करें और मैं आपको उसमें रजिस्टर कर दूंगा। और एक और है कि हैमिल्टन 23 मई को होगा, ये सेक्रेड हार्ट गर्ल्स कॉलेज 52 क्लार्ड स्ट्रीट हैमिल्टन ईस्ट में होगा। तो इसके लिए आप धीरेन नरेश को वहां पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो आपके लिस्टर है ठाकुर भीम सिंह, उसका जो डिस्प्ले है वो एक एक अंदाज का होता है, आर्टिफैक्ट्स का डिस्प्ले, तो मेरे ख्याल से वो भी रहेगा। और हम लोगों को बता दें हैमिल्टन वालों को कि हम वाइटाकरे सीनियर से लगभग 10 लोग हम लोग आ रहे हैं वहां पर, तो जरूर वहां पर कुछ नगोना पानी होगा और उसका वो सब मुफ्त में होगा और वहां पर हम मिलेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को आशीर्वाद है, और ठंडा नहीं रहिएगा, अभी ठंड आ गई है बट आपको सब्सिडी मिल रहा है, प्लीज कीप वॉर्म। और गिरमिट के लिए जरूर रजिस्टर हो जाए अगर नहीं हुए हो, और जानकारी के लिए आप DJ साइलेंट से हमारे कांटेक्ट ले सकते हो। पंडित जी, तुम्हारा प्रोग्राम बहुत फेमस, अब मैं कल एक फंक्शन में गया था, जब लोग मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं कहे के, जानते हो इसके ठाकुर है जो DJ साइलेंट के प्रोग्राम में बात करता है, तो देखिए तुम्हारा नाम कितना ज्यादा रोशन हो गया है। और ये जो ठाकुर और पंडित, विश्वामित्र और परशुराम मिलकर अभी उधम नाच रहे हैं रेडियो फिजी पर, सॉरी रेडियो तरना पर। महाराज कब तक ये आएगा यार, बहुत लोग सुन नहीं पा रहे हैं तुम्हें, कुछ
1: जी
0: पता है कब तक?
1: बस आने वाले हफ्ते में सामान्य हो जाएगा।
0: इतना दिन लगा, मुझे कहता लगता कि ये लोग चांद पर गए हैं वो ट्रांसमीटर फिट करने, यार कितना समय। और मेरा भाई, मैं नहीं जा रहा, ठीक है मैं ठीक है, मेरा भाई वो वेलिंगटन में तो डायरेक्ट सुनता। हाँ

0: Hey Hamiltonians, guess what? अब आपके यहाँ Hamilton में आ गया है Global Finance. For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing या refinancing के लिए contact करें Global Finance को, जो mortgage के साथ साथ insurance में भी specialize करते हैं. Life, trauma, health insurance, हर चीज के लिए Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26, 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 07577-0888. Global Finance, now in Hamilton.
1: राजस्थान की मेहमान नवाजी के तो क्या कहने, और अब वही मेहमान नवाजी और वही स्वाद आपको मिलेगा यहाँ ऑकलैंड में एट श्री रेस्टोरेंट. ऑथेंटिक राजस्थानी एंड डिलीशियस इंडियन वेजिटेरियन क्विजीन, राजस्थान की मशहूर दाल बाटी चूरमा, चाट आइटम्स एंड मेनी अदर स्नैक्स एंड फुल मील्स. ऑकलैंड के मशहूर शेफ रामेश्वर आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं टू द श्री रेस्टोरेंट एट 11 bar 726 ग्रेट साउथ रोड, मानिकाओ, ऑपोजिट रेनबोज इन. और यहाँ फंक्शंस होस्ट करने के लिए भी बड़ी जगह अवेलेबल है. Shree Restaurant. Open 6 days, closed on Wednesdays.
2: Kick off the winter season with these winning deals from Rebel. Like 20% off all women's Puma, New Balance and Under Armour clothing and running shoes. And 20% off football, rugby and netball equipment. These deals and so much more are now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
3: Weekend mein ghar ka saman lena hai? To grocery shopping ke liye aaye DH Supermarket Henderson. 5 Moselle Avenue off Lincoln Road in Henderson. Jahan par aapko milenge great in-store specials, huge store and ample parking at 5 Moselle Avenue off Lincoln Road, Henderson. DH Supermarket. Oh!

0: everyone, this is Nikita Gandhi and you're listening to the DJ Shailen Show on Radio Tarana, New Zealand.
1: बस 10 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में वन डे मफा टू रेडी हो रहे हैं रेडियो पर आने के लिए. तो यप, इस गीत के बाद उनसे कुछ बातें करेंगे. डीजे शैलेन शो जारी है.

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया।

0: साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: जूली जूली।

0: Radio Tarana. Time check.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
2: DJ Shalin show जारी है और इस समय स्टूडियोज में कितने बजे हैं मेरे भाई?
3: मालिक कसम रेडियो तराना और DJ Shalin show में 10 बजा है. कहते हैं DJ
2: मौसम मस्ताना.
3: हाँ, तराना सिर्फ नाम नहीं, मतलब कैसे है मेरे भाई?
2: बस मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना. बस सोच रहे हैं यहाँ से निकल कर कहाँ जाएं सैर सपाटे के लिए. इतना लाजवाब मौसम आज ऑकलैंड में यार.
3: हाँ, बहुत जुलुम लाजवाब. और रास्ता तुम बोला अनजाना, रास्ता सीधा जावे है रग्बी मैच के साइड ना.
2: कल रात
3: कैसे? अच्छा, कैसे हमारा प्रेडिक्शन रहा बोए? तुम बोला पता नहीं बू बा जन चीफ से के को, मतलब जन चीफ से रू रहा डुआ, मतलब सेकंड हाफ पफ आउट देखा डुआ नहीं सके.
2: बट दैट ग्राउंड इज रियली गुड ब्रदर, और पूरा कवर्ड है. तो आई डोंट नो, क्रुसेडर्स के लिए एडवांटेज है डिसएडवांटेज, क्योंकि अब उनका जितना भी होम गेम है, चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो, लेकिन वो तो वही टर्फ पर खेलेंगे ना.
3: हाँ, टर्फ उतना खेले के बाद भी हम देखा गेम, कितना गेम्स हुए, अबाउट 5-6 गेम्स हुए टर्फ होल्ड करी से, इतना जुलम से, मतलब स्क्रम में तुम देखो टर्फ ऐसे नहीं उखड़ जावे ना, जैसे कि कोई जगह प्रेशर से. बट आई थिंक इट्स वेल मेड, मतलब जुलम से है. बट यू नो इट्स गुड क्राइस्ट चर्च के लिए जुलम हो गया. इंडोआ भी रहे, कभी कभी सारा वेदा कर रहे तो इंडोआ गेम रहे और अच्छा भी रहे ना. तो आज जो देखो कैसे है, देखो गेम जो मिली तुम्हें देखे के बू बा. कल के गेम हम लोग देखता रहा, वही कैप्टन से हम बात करा रहा, हमारा कैप्टन बोले कैसे रही, हम बोला पतरा से खाली 2-4 पॉइंट के इधर उधर रही, तो हमारा तो जानो पतरा से 7 है पॉइंट इधर उधर. बट अच्छा कही फिजिकल गेम जिसके नहीं बोले एकदम पूरा. बट एक चीज डीजे यू नो, जैसे हम लोग देखता रग्बी में आजकल बहुत बॉल मारे लगी ना हवा में, बॉल मार के और इधर मारे उधर मारे, इधर मारे उधर मारे, उस वाला गेम के स्पॉइल कर दे रनिंग रग्बी के यार.
2: अच्छा, लास्ट में वो हवेली ने किक क्यों किया था? वही अभी मैं सोच रहा था नो, कल गेम देखने के बाद की यार देखे नो अटैक ड्रैग रख करके ट्राई शायद बना सकते, लेकिन उन्होंने किक कर दिया. लगता है एक्स्ट्रा स्मार्ट बन गए थे यार, नो समथिंग हैपेंड.
3: नहीं, वो कभी कभी मांगे 50-22 नहीं जुन रहे उला चीज ट्राई करे, समझ गया. तो पूरा क्रूशल मोड में 50-22 ताकि वहाँ उनके लाइन आउट मिले, फिर वहाँ से बोलो भाई. हम कल कैप्टन से बात करते रहे जीजे कि उस क्रुसेडर्स फॉरवर्ड में खेली, उनका फॉरवर्ड बहुत जुलूम है, मतलब है उन थोड़ा स्लो है पीछे. अगर सेकंड फास्ट करी सेकंड हाफ में तो ट्राई रहा पिला, बिकॉज सेकंड फास्ट गेम करी चीज कर कम फास्ट बैक लाइन, तो वही कारण. और जो कॉन्टेक्ट हम नहीं बढ़ा रहा, फिजिकल कॉन्टेक्ट और बहुत. खाली हम एक चीज देखा विद इन द गेम, थोड़ा दागे आगे लगे रहा मारे लंबा उधर भी इधर मारे, उसे गेम स्पॉइल कर देना. सेकंड वाला गेम भी हम लोग देखता रहा, सेकंड वाला गेम देखे 3 बजे सवेरे आया तो देख दाग के, तो बैठा रहा हम लोग फ्रेंड लोग. तो यू नो दिस हाउ इट हैपेंड मैन, इट्स गुड बट गुड टुडे यू नो व्हाट, ड्रू वाला अच्छा गेम रही, बिकॉज आइलैंडर्स के फिजी में बहुत टाइम रही. और मोहना पैसिफिक तो कैप्टन के बोला ये ला तुम लुक के से देख लो, बोला लुक के देख लो कल इसको ना, फिर वरी नहीं करो अपन कुछ करते रहो जाके ठोको ठाको अब हरे हरे आ गया, फिर लुक के कली देख लो. तो बोला उसमें वो जोश नहीं रही. बट उसके बाद जो गेम रही डीजे रेड्स वर्सेस ब्रम्बीज, वो गेम में इलिमिनेशन वाला, मतलब वही टॉप सिक्स वाला बात है जी. और आज जुलूम से सोखा भी है, एलिमिनेशन फाइनल है ऑकलैंड वर्सेस मेलबर्न सिटी, वो भी बहुत बूबाला गेम रही. और फिर उसके बाद 9:40 एलिमिनेशन है मेलबर्न विक्ट्री पर सिडनी एफसी, तो एलिमिनेशन में आएगी फिर उसके बाद सेमीफाइनल, तो यू नो इट शुड बी गुड. और तुम्हारा जो क्वेश्चन के आंसर है डीजे, जो प्यार क्यों चाहिए, तुम बोला एहसास है, एक कोई एक भीतर की ऐसा फीलिंग है जिसके तुम डिस्क्राइब नहीं कर सकता, यू नो एहसास है बोले. और जो फोटो छोड़ा है जो ना पेटी हेला और लाठी हेला और झाड़ू, तो हम लोग के वो तीनों चीज से लगा सटासट
2: ना
3: अपन टाइम पे. हाँ, और कौन सी किल्स लव फास्ट, मतलब प्यार के कौन सी जल्दी में झूठ, तो मैं लपेटेगा इधर नहीं बोले हम लोग में लपेटे कल इधर उधर लपेटो, तो तुम यू नो वो चीज नहीं लास्ट करी, तो यू नो. अच्छा, जाते जाते एक एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई के पास 2 बेडरूम या 3 बेडरूम फ्लैट हो तो मासला चेटी के रिंग कर सके 0210298733 6. पापा टोए मनकाओ मनरेवा एरिया में है तो मिल जाए तो बहुत अच्छा है. दुई फादर एंड कुंजी बप्पा और मैया के दुई जन रही उसमें. तो प्लीज अगर कोई लगे है टू बेडरूम फ्लैट तो जरूर बताइए हमें और कीमत आपको दिया जाएगा. रिक्वेस्ट है, जल्दी खोजता हम लोग ना.
2: 021-029-873-36 पर आप रिंग करें. 021-029
3: बहुत बहुत बहुत मदद होगा कि फास्ट अगर खोज दिया जाए. लोग थोड़ा जल्दी में है तो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा. बहुत नाइस कपल, मतलब कपल है और माँ भी है तो दो तीन जन रही है तो यू नो इट्स वेरी नाइस पीपल. हम जनता हूँ के.
2: अच्छा नंबर बताइए भाई, नंबर बताइए भाई, वेट करो. 021-029-873-36
3: जी हाँ डीजे, थैंक यू वेरी मच. और जाते जाते एक गाना तुम्हारा हो जाए और अरे यार सुन, अरे यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी दे दी.
2: वाह भाई, यू एंजॉय योर ट्रिप एंड स्टे सेफ. और हमारे जो यूएस के भाई बहन हैं, भाई बहन नहीं भाइयों को ढेर सारा प्यार, उधर आपको मिलेंगे हमारे दोस्त.
3: ठीक है, बहुत धन्यवाद डीजे, थैंक यू वेरी मच. वो फिर बात जरूर करते रहेंगे, कहीं भी रहेंगे.
2: जरूर जरूर, थैंक यू ब्रदर.

0: Print on Radio Tarana. Chemist Warehouse has now opened in Fangaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Fangaparoa next to the Coast Shopping Mall.
1: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices. They've got everything you need to look and feel your best. They are open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in-store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day.
2: अपनी डेली कुकिंग को बनाएं और भी हेल्दी और भी टेस्टी कशिश ब्रांड के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ. और अब आप इंजॉय कर सकते हैं कशिश का फ्रेश डोसा बैटर फॉर सॉफ्ट फ्रेश इडलीज एंड क्रिस्पी डोसास. अपनाएं कशिश का डोसा एंड इडली बैटर. और सीमित समय के लिए इनकी एक्साइटिंग ऑफर में डोसा बैटर रेंज में से कोई भी डोसा बैटर लें और साथ में पाएं 250 ग्राम का कशिश जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्री. नो एडेड केमिकल्स, नो विनेगर. फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड जिंजर गार्लिक पेस्ट बाय कशिश. और कशिश का डोसा बैटर अवेलेबल एट ऑल मेजर इंडियन आउटलेट्स.
3: गौर से सुने, ब्लॉक हाउस बे में फुली फेनिस्ड ग्रैनी फ्लैट रेंट पर अवेलेबल है. एक्सलेंट क्वाइट लोकेशन, न्यू हीट पंप जस्ट इंस्टॉल्ड, वाईफाई सर्विस अवेलेबल. Rent only $450 per week. Contact 021-708-080. That's 021-708-080.
4: Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end Sunday. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
5: मोआ पॉइंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से अनट्रीटेड वेस्ट वाटर कुक स्ट्रेट में डिस्चार्ज हो रहा है और वेलिंगटन साउथ कोस्ट तक जा सकता है. वाटर क्वालिटी जानकारियों के लिए हमेशा याद करके LAWA वेबसाइट देखें. तैरने जाने से पहले LAWA.org.nz देख लें. साउथ कोस्ट के तारकेना बे से दूर रहें. अनट्रीटेड वेस्ट वाटर तट के करीब डिस्चार्ज हो सकता है शॉर्ट नोटिस पर और बगैर चेतावनी के, खासतौर पर गंभीर बारिश के समय. और जानकारी के लिए वेलिंगटन वाटर .co.nz देखें.
6: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ. बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक. और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज. तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश. टीज एंड सीज अप्लाई.
5: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेड शीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें. आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स माउंट रॉस्किल को सौंप दो. यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे. स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री and dry cleaners 220 Stoddard Road Mount Rosco. Aasan, bharosemand aur 24/7.
7: Elf Discount Furniture. Papa Toy mein chal raha hai amazing specials from beds, dining suites and lounge suites. खरीदिए a beautiful 7-piece dining suite या quality corner lounge suite और luxurious queen pillow top pocket spring mattress at reasonable price. Quality furniture low price में. Else discount furniture. Limited stock available. 355 Great South Road, Papa Toy.
8: This Mother's Day, Michael Hill is celebrating all kinds of mums. From the new mums, the step mums and even the pet mums. Celebrate Mother's Day with pieces she'll love forever. Make sure to visit Michael Hill online or in-store today.

0: इधर जस्सूबेन भी है, काफी दिनों के बाद इनसे बातें होने जा रही है। जस्सूबेन आपका स्वागत है, कैसी है जी?
1: मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बस चल रहा है, ठंडा ठंड पड़ रही है, अभी ठंडी लग रही है, बेड में लेटे लेटे आप रेडियो सुन रहे हैं।
0: जी रेडियो भी सुन रहे हैं, और अभी तो रेडियो पर रेडियो नहीं आ रहा होगा प्रोग्राम, लेकिन वो ऐप ऑप के जरिए कहीं फोन उन पर सुन रही होंगी ना आप शायद?
1: नहीं फोन पे नहीं, मैं दूसरा स्टेशन अपना रेडियो सुन रही हूँ।
0: जी जी जी जी जी जी अपना रेडियो सुन रही है। अच्छा अभी बताओ आज कौन सा शायरी है हमारे, कोई जोक वोक है कि नहीं?
1: जोक तो है, आप लोग तो पता नहीं कहे कौन उसे तराना स्टार्ट करेगा, मैं तो बताना बहुत मांगती हूँ। चलो मैं जोक भी बताऊँ, शायरी भी बताऊँ, जो भी सुनना चाहे बताऊँ, स्टार्ट कर लूँ अभी?
0: जी जी जरूर।
1: अच्छा एक जोक है, एक कोई कलाकार दूसरे गांव जा रहा था, तो बोट में जाना पड़ता है दूसरे गांव, बीच में नदी आती है, तो उसके साथ में 5-6 दोस्त भी थे और एक बूढ़ी माँ, एक बेटा और बहू भी थी। सब जा रहे हैं बोट में जा रहे हैं, तो हवा अब बीच में जैसे जाने लगा, पानी के बीच गया तो वहां पे थोड़ा तूफान से था, तो बोट इधर उधर हिलने लगी। तो बहू ने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप अगर बोट डूब जाएगी तो आप किसको बचाएगा, मुझे बचाएगा कि आपकी माँ को बचाएगा? तो वो बेटे ने कहा भाई मैं तो आपको बचाऊंगा। तो बहू ने कहा नहीं नहीं नहीं मुझे मत बचाना, आप माँ को बचा लेना, मेरे बचाने वाला तो 5-6 उसमें पड़ा है। वो मुझे बचाएगा बोले, वो तो बोलते हैं तो मुझे वो बचा देगा बोले, मेरे मेरे के लिए बड़े बड़ी नहीं करना बोले के ऐसे बोला। दूसरा जो शायरी सुनाई दे, कहते हैं कि बाप तपा धूप में, माँ तपी चूल्हे में, बाप तपा धूप में, माँ तपी चूल्हे में, और तब जाके बेटी की जिंदगी सवार हुई।
0: वाह वाह, ऐसा होता
1: ना? हाँ ऐसा ही होता है, वही तो। और खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है, यही रकम के चलता है अभी तो, वही तो, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है, आप अपने मेरे सब है, मुझे आपसे कोई वैर नहीं, बस यही मेरी बात है।
0: चलो जस्सूबेन अपना ख्याल रखें, और उम्मीद है आने वाले हफ्ते में रेडियो सब ठीक ठाक हो जाएगा, फिर आपसे बातें करेंगे, ठीक है?
1: एकदम जरूर से, मैं तो इतना बात करना चाहती हूँ मगर चलते नहीं है, क्या करूँ ना। जैसे बरसों से जैसे आपसे जुदाई हो गई।
0: ओए होए होए होए होए, ऐसी बात नहीं है, चलो
1: है आपसे भैया से बरसों से जुदाई हो गई, ऐसा लगा बहुत दिन हो गया, जल्दी से बना दो तो मैं सब बात करूँ, शायरी करूँ, जो करूँ, मैंने सब बटोर के रखा हुआ है।
0: चलो आपसे थैंक यू वेरी मच जस्सूबेन, आपके घर पर भी सीनियर्स हैं, जरा सा ऐप डाउनलोड करके प्ले कर दें ताकि वो भी प्रोग्राम सुन लें, उनसे पूछ लें कि तराना सुनना है जी, तो ये सब आप करते रहें, और रेडियो तराना पर डीजे शालिन शो भी आप सुनते रहें।

0: यार मुझे फिजी जाना था।
1: कब जाना है?
0: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
1: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
0: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
1: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
2: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 00679-652-0228।
1: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
3: Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end Sunday. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
4: Farmers has the best gifts for mum. Surprise her with a new fragrance or beauty gift. Keep her cozy with a new robe and sleepwear. Treat her with some new styling tools or a gorgeous diffuser or candle. Celebrate mum this Mother's Day. Farmers, your department store.
5: Your weekly dose of love and great conversations with your very own Sapna.
6: Sapna Sunday ko 2 PM se aapke saath.
7: Kaun?
6: Main Yamraj hoon.
7: ओहो, जय हो महाराज। लेने आए हो तो चलो।
6: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी?
7: हाँ, मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
6: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
7: ओके, थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255-5500 पर।
8: इंट्रोड्यूसिंग पिज़्ज़ा हट्स न्यू टीका एंड पनीर रेंज। रिच टीका बेस, क्रीमी पनीर, बोल्ड फ्लेवर। गेट द फर्स्ट टेस्ट फ्रॉम 10.99 पिकअप एट पिज़्ज़ा हट। लिमिटेड टाइम ओनली, टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
9: Bunnings can help you get your indoor project sorted with an easy storage 60-litre round flexi storage tub, just $11.68. And all set pack of 20 microfiber cleaning cloths, only $10. Shop online or in-store at lowest prices are just the beginning.
10: Joe's Supermart uses fibre for their payment systems, while staff secretly use fibre to share funny videos like the one Perry uploaded of his dog skateboarding down a street that happens to have an ad from Chorus which says New Zealand runs on fibre.
11: माँ।
12: हाँ मेरे लाल।
11: खुश हो ना माँ?
12: बहुत मेरे पुत्र।
11: नागर अच्छा है ना माँ?
12: बहुत वधिया है पुत्र।
11: आशीर्वाद दो ना माँ।
12: हमेशा खुश रहे, चढ़दियाँ कलावां च रहे मेरे पुत्र।
11: गालियाँ तो वैसे ही देती रहती है माँ।
12: चुप, फिट्टे मुँह तेरे। ओह ते मेरा प्यार है मेरे बच्चे।
13: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111।
14: Global costs are surging. Rising inflation is on the horizon. Beat the hike with the iFurniture Beat Inflation Sale. Grab designer sofas, dining, beds and more at warehouse prices. Don't just watch prices go up, get ahead of them. Shop smarter at iFurniture and lock in the value today. Shop online at iFurniture.co.nz with NZ wide shipping. Visit us in Auckland, Hamilton and Christchurch. iFurniture. Better. Cheaper. Smarter.
15: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
16: India jana hai? तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। Fly with Air India from New Zealand. Easy return connections via Australia or Singapore to India. और फिर seamless travel within India. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, Air India connects you to every corner of India. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही friendly Indian hospitality के साथ। तो अगली बार घर का सफर हो, Fly Air India. For more information, visit your local travel agent today. सुबह से शाम तक

0: डीजे शालिन शो जारी है, 12 बजे तक आपके साथ हम रहेंगे और 12 बजे के बाद नेहा आ रही हैं आपका साथ देने के लिए। ओके, अभी उधर जस्टबेन को भी याद कर रहे हैं, प्रोग्राम ये भी सुन रही हैं ऐप के जरिए, तो अभी जितने भी दोस्त हैं कोई ऐप के जरिए, कुछ लोग टीवी पर प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनका भी स्वागत हम कर रहे हैं। और क्रिश हमारे साथ हो गए हैं इधर, गिरमिट नो फाउंडेशन और साथ में यहाँ पर काफी काम ये भी करते रहते हैं, तो अभी एक गिरमिट वाला फंक्शन जो है ये भी होने वाला है। तो क्रिश भाई आपका स्वागत है रेडियो तराना पर, कैसे हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग शलिन जी और गुड मॉर्निंग टू ऑल तराना लिसनर्स।
0: तो बताइए, ये जो 147th वाला जो कमेमोरेशन है जिसके लिए तैयारी काफी अच्छे तरीके से हो रही है, तो ये कब और कैसे मनाया जाएगा?
1: जी हाँ, तो ये एनुअल इवेंट है हमारा जो होने को है 16 मई मेंगरी में मललुआ कम्युनिटी सेंटर पर,
0: जी
1: 4:30 to 8:30 PM। और ये एनुअल इवेंट है टू ऑनर एंड रिमेम्बर द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर फोर फादर्स, जिसे आप जानते हैं। और वन ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड बी रियली प्राउड शलिन भाई इज की हम ऑकलैंड में न्यूजीलैंड में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीमी रिमेम्बरेंस डे बनाते हैं, एंड दिस ईयर तो फिजी में भी नहीं हो रहा है ड्यू टू कॉस्ट इश्यूज, सो वी शुड कम टुगेदर वंस अ ईयर एज अ कम्युनिटी
0: आप लोग जो काम यहाँ पर करते हैं उधर ठाकुर से भी अपडेट हमको मिलते रहता है, बहुत भारी संख्या में अराउंड द कंट्री से जो लोग हैं ये आते हैं और इकट्ठा होते हैं, तो इस साल भी ऐसा ही कुछ होगा।
1: जी हाँ, और we also got regional branches जहाँ पर हैमिल्टन में, लिस्बन में, क्राइस्टचर्च में, there are a lot of support around regions to commemorate as well. So it's good to see कि जो गिरमिट का जो ये फ्लेम है वो कीप स्प्रेडिंग अक्रॉस न्यूजीलैंड और हमारे लोग में जागृति आ रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग प्राउड यू नो ऑफ व्हाट आवर एंसेस्टर्स डिड, एंड आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमारे जो यूथ यहाँ पर है दे रिमेंबर हु दे आर, वेयर दे कम फ्रॉम, ताकि हम जो मॉडर्न लाइफ यहाँ पर जी रहे हैं उसका जो फाउंडेशन है कम्स फ्रॉम द स्ट्रगल सेक्रीफाइस खून पसीना जो हमारे विदेश ने पाया उनके लिए।
0: जी, तो जो प्रोग्राम है इस साल किस तरह से होगा, कितने बजे से शुरू होगा, तो इसके बारे में जरा कुछ बताना चाहेंगे या फिर नेक्स्ट वीक कुछ जानकारी हम दें?
1: ठीक है, हम बता देंगे क्योंकि बहुत बिग क्राउड वंस अगेन, और प्रोग्राम विल स्टार्ट न्यूजीलैंड टाइम नॉट फिजी टाइम 5 PM शार्प। अगर आप 4:30 तक आ जाएं तो करें नेटवर्किंग टी स्नैक्स, फ्री डिनर, फ्री स्नैक्स, फ्री कावा भी है, फ्री एंट्री है, देयर इज नो एक्सक्यूजेस। एंड और कोई अगर है फैमिली में आपका 80+ एज का, अगर उनको मेडल यू नो वी वुड लव टू ऑनर देम विद अ मेडल, सीनियर मेडल, तो प्लीज रजिस्टर थ्रू शनीला महाराज। और यूथ का और ट्रिप भी चल रहा है नेशन वाइड, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ टू पार्टिसिपेट एंड डू सम रिसर्च एंड लर्न अबाउट देयर ओन हिस्ट्री, एंड वी पुट मोर देन $2,000 ऑफ प्राइजेस फॉर यूथ्स ओनली।
0: तो मललुआ कम्युनिटी हॉल में ये होगा 16 तारीख मई को, तो गिरमिट वाला जो प्रोग्राम है इसके बारे में और भी रिमाइंडर्स हम आपको देते रहेंगे, सोशल मीडिया पर भी आप जाकर नो चेकआउट करते रहें, इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करेंगे। और तो क्रिश नायडू से हम बातें कर रहे थे, प्रेसिडेंट ऑफ फिजी गिरमिट फाउंडेशन NZ। और क्रिश भाई, नेक्स्ट वीक मौका लगा तो कुछ और जानकारी लोगों को हम देंगे, रिमाइंडर्स देते रहेंगे, ठीक है जी?
1: Yeah, thank you. And we'll be releasing more names of some of the key dignitaries from India, Fiji, and New Zealand that will be coming as well. Due to privacy, I can't talk in more details about it today. Dhanyawad Shalin bhai, and thank you, Rajat Anna, for your years and years for Fiji Netball being on Green TV. Dhanyawad.
0: No worries. और इसके बारे में जानकारी आपको हम जरूर देते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स में भी। DJ Shalin Show ये जारी है, कहाँ पर हैं आप सुबह सुबह आज प्रोग्राम सुन रहे हैं ये भी हमको बताते रहे हैं।

0: 11 भी बजने वाले हैं और अब लंच की तैयारी आप भी कर रहे हैं, तो चिकन और लैम को आज किस तरह से आप बनाएंगे, ओके ये भी आप सोच रहे हैं, या फिर ऑलरेडी वो प्रेशर कुकर की आवाज़ जो है सीटी बजने लगी है, कुछ लोग एकदम यू नो उनको भूख लगने लगी है, सैटरडे संडे स्पेशल रहता है लंच में। वैसे नोमा आज आपके लंच में क्या है जी?
1: आज तो मेरे लंच में है पम्पकिन और रोटी।
0: पम्पकिन? ये सैटरडे को कद्दू कौन खाता है जी?
1: अभी पीजी वाला कद्दू आने लगा तो
0: नाइस कद्दू के साथ होना चाहिए पूरी।
1: हाँ पूरी।
0: ओए होए होए होए होए होए होए होए होए होए। तो ये भी ट्राई करते रहे। कुछ लोग आज पुलाव बना रहे हैं, पुलाव कहीं पर फ्राई राइस बन रहा है, सो ये सब आज लोग एंजॉय करने वाले हैं और एंजॉय करते रहें। अच्छा मौसम भी है आज इधर ऑकलैंड में, सो व्हाई नॉट मैन, कुछ ना कुछ खास आप करते रहें। तो नोमा आज नेशनल नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डे भी है, तो आपके वैसे कितने हैं सिबलिंग्स?
1: हमारे तो बहुत हैं।
0: बहुत? नहीं रियल वाला कितना? रियल वाला वैसे नहीं।
1: हाँ रियल वाला है बट कितना
0: गिना भी नहीं आज तक। ओ 12? ओ वाओ।
1: वन डजन।
0: तो नंबर 12 पर आप कौन से नंबर पर हैं?
1: नंबर 1 पे, लास्ट नंबर।
0: लास्ट बोले तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी?
1: छोटी
0: छोटी। ओह छोटी छोटी नाटी नाटी छोटी नाटी। अच्छा एक और सवाल हमने किया था कि फेसबुक पर कि कहते हैं नहीं वंस अ चीटा ऑलवेज अ चीटा, इस बात को आप मानती हैं या आप इसको अपोज करेंगे या कुछ और? आपका कमेंट क्या है प्लीज?
1: आई थिंक सो, एक बार जब चीट करते हैं तो समटाइम्स यू जस्ट कांट बिलीव दैट पर्सन अगेन।
0: You can't trust the person again.
1: दोबारा वही, हाँ, फिर कहीं वही काम दोबारा फिर से नहीं कर दे।
0: Okay.
1: Well, inside your mind, it will be always.
0: Always, eh? Always.
1: नहीं, not sure.
0: अच्छा बताओ आज गाना कौन सा आपका?
1: आज का गाना है मेरे

0: Radio Tarana.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
2: Hey, good day. Tarana Studios में दिन के 11 बज चुके हैं, एक घंटे तक और आपके साथ हम रहेंगे. जो भी ऐप पर जहां पर भी आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका स्वागत है. वेरी गुड मॉर्निंग. डीजे शालिन शो जारी है. इट्स 11 AM.
3: यू आर विद शालिन ऑन रेडियो तराना.

0: DJ Shalin Show, लोग पसंद कर रहे हैं ये नया वाला जिंगल, थैंक यू जी। और इसी तरह से आप भी जरा सा मोटिवेट करते रहे हमको भी, ताकि कुछ ना कुछ नया अपने प्रोग्राम में हम भी लेकर आते रहें। वैसे आज नेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाला डे भी है। सूजी, आपके कितने भाई बहन हैं सब मिलाकर?
1: मेरे I got four sisters and three brothers. जी हाँ, सब न्यूजीलैंड में है। मम इन डेड अभी था तो वो दोनों तो पास्ट हो गए, बट दे ऑल हियर, दे ऑल हियर, दे ऑल अराउंड मी।
0: ओके ओके, दैट्स गुड। और एक और सवाल हमने आज किया है सुजी, और सवाल ये है, किसी ने हमसे सजेस्ट किया था कि इसके बारे में जरा सा पूछो, तो किसी ने कहा है कि वो सवाल जो है इसमें लिखा है कि वंस अ चीटा ऑलवेज अ चीटा, जो लोग एक बार धोखा देते हैं प्यार में या किसी चीज में वो हमेशा धोखा देंगे। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है, सही बात है या नहीं?
1: कभी कभी प्यार में खराब इंसान को आप सीधा कर सकते हैं प्यार से, बतला कर समझा कर, और कभी कभी जिसको खराब लग जाता है, खराब फ्रेंड्स नहीं छोड़ सकते हैं, तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे वो आदत, यू नो, चाहे जितना कोशिश करो, पर प्यार से आप किसी को भी बहुत प्यार से समझा बुझा कर सही रास्ता पे ला सकते हैं।
0: हाँ ना, ऐसा हो सकता है,
1: हो सकता है, जरूर हो सकता है।
0: तो जरूरी नहीं है कि वंस किसी ने चीट किया है किसी के साथ वो हमेशा करेगा, है ना?
1: हाँ हाँ,
0: ओके ओके, चलो। और आज आप,
1: हाँ हाँ बोलो
0: जी, आपके बेटे का बेहतर है, चलो उनको याद कर लेते हैं लगे हाथों।
1: निकलस सिंह, हाँ, आपने उसको मिला है माउंट रॉस्किल में, आई थिंक इट वाज क्वाइट सम इयर्स बैक। आपने उसको, हाँ, आई थिंक इट वाज सम सॉर्ट ऑफ गेम वाज ऑन एंड यू वेंट टू मीट हिम।
0: ओके, निकलस सिंह को कौन कौन याद कर रहा है? उनकी वाइफ है,
1: उनकी वाइफ है जेनेट सिंह, और उसकी एक ही बेटी है इजाबेला, और उन भाई लोग हैं, छह पांच भाई है, लॉरेंस सिंह, सचिन सिंह, रोड्रिक सिंह, जीनस सिंह एंड एक्सेवियर सिंह, और एक ही बहन है बेनेडिक्ट।
0: ओके, बेनेडिक्ट, चलो सभी ने याद किया है, और मम्मी सूजी की ओर से भी हैप्पी बर्थडे ना?
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: ओके, चलो जी, थैंक यू, और उनको हमारी ओर से भी हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और जितने भी दोस्त बर्थडे मना रहे हैं इंतजार करें, 11:30 के आसपास आपकी खुशियों में हम शामिल होंगे, आपको हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। फिलहाल लंच की तैयारी आप भी कर रहे हैं, आज तो कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर बनने वाला होगा आपके घर में।

0: जानते हैं कि जब लड़की लाल रंग का पोशाक पहने तो उसका मतलब होता है कि वो किसी से प्यार करना चाहती है,
1: और जब लड़की ब्लैक वाला पहन के आए तो उसके मतलब कूट कूट के मारी।
2: फैक्ट बाइट ऑन डीजे शैलन शो।
3: ओके, समय हो रहा है फैक्ट बाइट्स का, और जितने भी बच्चे लोग हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं उनका भी स्वागत हम कर रहे हैं। मैन, दे आर नॉलेजेबल है, उनका जो ज्ञान होता है एक अलग लेवल का होता है। कभी कभी दीवू के साथ जब मैं बैठता हूँ तो मैं भी सोचते रहता हूँ कि ये कहाँ से इतना सारा इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। तो यप, उनके साथ आप भी बैठे सुने उनकी कहानी जो बच्चे घर पर हैं। ओके, तो आज सुबह सुबह एक बार फिर से फैक्ट बाइट्स का समय हो रहा है, और कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेजर्स इन लाइफ होता है टू रीड अ बुक इन टोटल साइलेंस। एकदम साइलेंस्ड वातावरण में जाकर आप किताब पढ़ें, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेजर्स इन लाइफ। ओके, कभी आपने ऐसा ट्राई किया है? नहीं ट्राई किया है तो आज सबसे दूर होकर किसी पार्क में कहीं पर जाएं और किताब लेकर आप बैठ जाएं और देखें कि आपको सुकून मिलता है या नहीं, और फिर मुझे आप बताएं। कुछ लोग ऐसा करना पसंद करते हैं। ओके, वैसे कितने साल हो गए आपको बुक उठाए, किताब उठाए पढ़ते हुए? ये तो अलग सवाल है ना। एनीवे, उधर वाशिंगटन डीसी में अभी हाल ही में किंग चार्ल्स के स्वागत में वहां पर नो यूनियन जैक के बदले में ऑस्ट्रेलियन फ्लैग वहां पर होस्ट कर दिया गया, और रॉयल वेलकम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ वहां पर हुआ वाशिंगटन डीसी में जब किंग चार्ल्स का स्वागत हुआ। इजंट दैट एम्बैरेसिंग? तो ये सब यूएस में ही हो सकता है। अच्छा, एक महिला ने अपना जो जुगाड़ है ये किया ताकि वो 15,500 तक जो पैसे है ऑन ग्रोसरीज ये बचा ले। तो इन्होंने क्या किया, 2 साल के अंदर शी वेंट ऑन 6 dates अ वीक। ओके, खूबसूरत ये महिला है, और इन्होंने एक ऐसा स्ट्रेटजी सोचा जिसमें ये महिला जो है अलग अलग व्यक्ति के साथ रोज डेट पर जाती थी, और फिर उनसे कहती थी कि वो नो ऑब्वियसली जो जिनके साथ ये डेट पर जाती थी वो पे करते थे डिनर के लिए। तो इसीलिए इसी तरह से इन्होंने इतने पैसे बचा लिए अपने डिनर वाला डेट पर जा जाकर, और कुल मिलाकर 15,600 in 2 years। ओके, ऐसा भी होता है। उधर एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में $1.1 million जो है गलती से ट्रांसफर हो गया था, तो इनसे जब पूछा गया ये पैसे वापस करो, सो हाउ यू गोना पे बैक, तो इस व्यक्ति ने कहा नहीं मैं नहीं वापस करने वाला। इन्होंने दरअसल 1 year प्रिजन सेंटेंस स्वीकार किया और 1.1 मिलियन इनके अकाउंट में ही रहा। आप ऐसा कर सकते अगर इस जगह पर होते? 1.1 मिलियन या 1 year इन प्रिजन, व्हाट वुड यू डू? ये भी सवाल है जिसके बारे में हम कभी अमल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे और भी बातें हैं और इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं, नेक्स्ट वीक एक बार फिर से आपके लिए हम लेकर आएंगे सुबह सुबह ऑन डीजे शैलन शो।

0: नमस्ते ओकलैंड, मुश्किल वक्त में सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज आपके साथ हैं।
1: ये ऑफर करते हैं कंप्लीट फ्यूनरल पैकेज सिर्फ $4,299 से।
0: इस पैकेज में शामिल है ट्रांसफर्स, एम्बामिंग और सर्टिफिकेट, ग्रोवनर कास्केट, लाइव स्ट्रीमिंग, एक घंटे का चैपल सर्विस, क्रिमेशन या बुरियल, डॉक्टर सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई एंड प्रोड्यूस करना, ओवरसीज रिपेट्रिएशन अवेलेबल है।
1: ये विन्स अप्रूव्ड है, ऑकलैंड रीजन के लिए वैलिड।
0: ऑकलैंड के बाहर के लिए कॉम्पिटिटिव रेट्स के लिए कॉन्टेक्ट करें शलिन सिंह को 0272929776। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: इट्स 10 AM and you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World Online Same Day Click and Collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
3: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ओटुगेदर ओकलैंड।
4: Get the tick from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cozy bedding or kitchen favourites, shop Mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। आज जो लोग बर्थडे मना रहे हैं हमारी ओर से दिन आपको अनेक बार शुभ हो, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और सत्यजीत राय, इनका नाम आपने सुना होगा, लेजेंडरी फिल्म मेकर, इंडियन सिनेमा आइकॉन, और ये आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। वैसे आज डेविड बेकम, इनका भी नो बर्थडे आज ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी कि मनाया जा रहा है, इनको भी हमारी ओर से हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बैंडिट लाइक बेकम, मौका लगे तो ये फिल्म जरूर आप देखिए। इनके साथ में आज के हमारे कई क्वीनर हैं, निकोलस सिंह, ये अपना बर्थडे मना रहे हैं, वाइफ है जेनेट, डॉटर है इजाबेला, फाइव ब्रदर्स हैं, साथ में वन सिस्टर है, मम्मी है सुजी, सभी ने आज आपको याद किया है, उम्मीद है आपका दिन अच्छी तरह से बीत रहा होगा, हैप्पी बर्थडे। और फर्स्ट बर्थडे ग्रैंडसन हंटर मायना कुमार मांगरे में, ये मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे आपको। और आपने 29 अप्रैल को मैसेज भेजा था, आई थिंक कल परसों में आपका बर्थडे था, तो हमारी ओर से दिन आपको अनेक बार शुभ हो, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सुरेंद्र पाल कौर सेठी जी टाकानिनी में आज ये भी अपना बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हमारी ओर से, उम्मीद है आपका दिन भी अच्छी तरह से बीत रहा होगा। और इसके साथ में जितने भी और आपके दोस्त हैं उनको भी हम शामिल कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे इनको भी। रितेश चंद, आपने हमारे पास मैसेज भेजा है, वाइनोई माता लोवाहाट वेलिंगटन से, आज उनकी प्यारी सी गुड़िया माही त्रिशा चंद यही अपना बर्थडे मना रही हैं, 7 साल की हो गई हैं, हैप्पी बर्थडे आपको माही त्रिशा चंद। और सिस्टर्स हैं अर्चना चंद फ्रॉम वाइनोई माता, और रचना चंद है, नीज है, यानी कवि न रमेश की नीज आप हैं, मोंगारा की लवाहट से, और लोथका से दादा दादी है, रमेश चंद, काका काकी है, चंद्रेश चंद, और मिस्टर मिसेस सतीश शर्मा, कमलेश मेलबर्न से, शैलेश शर्मा, साथ में फुआ है अरुणा देवी ताकरीनी से, जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं सभी ने आज आपको याद किया है। हमारी ओर से भी जितने भी दोस्त आज बेहतर है, शादी की सालगिरह या खुशी का कोई भी मौका है, जहां पर भी हैं,

0: कानून तोड़ दिया, अब तो तू बेटा क्रिमिनल हो गया।
1: तुम पे बहुत तरस आता है यार, पर पुलिस का मामला है तो।
2: डरो मत, गलती कभी कभी हो ही जाती है और कानूनी गलती हो जाने पर एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। गुल लॉ लीगल सर्विसेज फाउंडर मिस्टर गुल के पास लॉ के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस है। वो आपको सलाह ही नहीं देंगे बल्कि आपकी सिचुएशन को समझेंगे भी। कॉल टुडे ऑन 0223530872 और विजिट gullaw.co.nz।
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
4: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe

0: वो बेस्ट जगह जहाँ पर आपको अपनी मंग के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें आई सब्सक्राइब के साथ isubscribe.co.in से। इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई। इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। फ्लाई विद एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया। दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ। तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे।
1: सागर आपके साथ संडे को 9 AM to 2 PM।

ओके अब यहीं पर अपने दोस्त डीजे शालिन को आगे दीजिए. मैं यहां से निकल रहा हूं इस वाले के साथ कि आज शाम 6 पर एक बार फिर से आपके साथ हम हो जाएंगे. आज काफी गेम्स वगैरह भी हो रहे हैं. ऑकलैंड एफसी वाला मैच भी देखने के लिए शायद आप जा रहे हैं, और फिर इधर नॉर्थ हार्बर स्टेडियम में आज ब्लूज और मोना पेसिफिका का गेम है. क्रिकेट भी रहेगा, तो ये सभी कुछ आप ऑर्गेनाइज करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, अपना वीकेंड को और भी खास बनाते रहें. और मैं यहां से निकल रहा हूं. जाते जाते याद दिला दें कि इधर 5 मोजेल एव लिंकन रोड हमारी गली वेस्ट ऑकलैंड में खुल चुका है DH सुपरमार्केट, जहां पर इनका ओपनिंग स्पेशल अभी भी जारी है. कुछ स्पेशल्स हमारे फेसबुक पेज पर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, इनके स्पेशल से भी आप फायदा उठा सकते हैं. उधर एक ग्रैनी फ्लैट है, रेंट के लिए रेडी है. इसके लिए भी आप तराना सुनते रहें, जानकारी आपको हम देते रहेंगे. ब्लॉक हाउस बाई इलाके में अगर आप मकान ढूंढ रहे हैं, ग्रैनी फ्लैट रेंट के लिए है 450 पे वीक. आप 021-708-080 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बाकी जानकारी के लिए. मैं अब यहां से निकल रहा हूं. मिलते हैं आज शाम 6 पर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाकी का दिन अच्छी तरह से बिताएं, एंड आई विल सी यू लेटर.

0: उदास हो?
1: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज।
0: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज,
1: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ, आपका साथी बरसों पुराना।
0: चलो समेटो खुशियों का खजाना।
1: ओनली ऑन